0: रंग बरंगा ने कुन जापन कर दबा जिया अंदर जियो सबकी जान ला सब किस तेरे बस तेरा कर भला
1: तेरे घर नंद बधाई
0: खुद घर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर जिसे जग का आनंद संसार तुझ जगते बिन मता।

निर्भउ नाम जपहु हर रंगे। पर तन दुख किस पाप ना फिड़ी, जम जंदार न आवे नेड़ी।

पंच नार संगष्ट सुत उठे दान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई।

दूजा लीन भावना यकीन दीन कैसे कह तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूं जोगिया बैरागी बने कहूं कबहू संन्यास भेस बन कह दिखावई कहूं पवन हारी कहूं बैठे लाए तारी कहूं लोभ की खुमारी सौ अनेक गुण गावई कहूं ब्रह्मचारी कहूं हाथ पै लगावे बारी कहूं डंड धारी हो गए लोगन भरमावई कामना अधीन परयो नाचत है नाचन सो ज्ञान के बिहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गीदर पुकारे परे शीतकाल कुंचर अनेकता कुंचर युगदहा अनेकता पुकार ही कहाँ पयो जो पै कलवत्र लियो काशी बीज चीर चीर चोरटा कुठारण सौ मार ही कहाँ भयो फांसी डार बूटे जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक तार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहते जो पै पाइय अतापनात तापना अनेक तन कायल सहत है जाप के कियत जो पै पायत अजाप देव पूदना सदीव तू ही उचरत है नव के उडित जो पै नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल बो करत है आग म जरित गत रांड की परत कर पताल के बासी क्यों भुजंग ना तरत है गऊ पयो मुंडिया सन्यासी गऊ जोगी

करता करीम सोई राजक रहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान भो एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान भो देह राम सीत सोई पूजायो निवाजी ओई मानस पै एक पै अनेक को परमाओ है देवता देव जज गंधर्व तुरक

हस हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मट लीप हारे पीतन लगाए हारे शापसी।

के परम भूले कहूं रंग के राज के धर्म अलूले कहूं देश के पेश के धर्म तामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पत्र के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लाधे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हर्म जाने कहूं धर्म के कर्म के परम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपं कहूं नेह गृहं कहूं देह दोखं कहूं औखधि रोग के सुख सोखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सात की तामसी हो कहूं जोग विद्या तरे तापसी हो कहूं रोग हरहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूम की भुगत मैं भर्म भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जच विद्या तरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक काव की कथा कहानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारं कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावा कहूं बैठ कुरान के गीत गावा कहूं शुद्ध शेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं कहूं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरपी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पष्टवी संस्कृति हो कहूं देश पाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजतानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र तारं कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेच पाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नागपानी कहूं गारड़ू गुड़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पछरा मच्छरा हो कहूं वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूं शैल छाला धरे छत्रधारी कहूं राज साजं तिराजा तिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता अछेदी अछयाद अद्वै विधाता ना त्रस्तं ना ग्रस्तं सम...

अनुपूत तेज अनछिजगात करता सदैव हरता सनात आसन अडोल अनुपूत कर्म दाता दयाल अनुभूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जा जय

जय अलग रूप आसन अडोल जय अमित तेज अच्छा अतोल जय ध्यान काज मुन जन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत काम बरखा सहंत कई कल्प एक आस

जुगण जूह जुवंग भैकंपह मेर पयाल पुअंग तब तापस जल सर्व जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर पलंग अनखेद स्वरूप अभेद अप्यंग अनुखंड अभूत अछेद अछयंग अनकाल अपाल दयाल स्वंग जठटियंग मेर आकाश पुअंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जहर चियंग देव अदेव परंग।

नारीक है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अपेघ है न तात है न मात है अख्याल अखंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है।

है अखंड है न रोग है न सोग है न पीत है न पंड है न अंग है न रंग है न संग है न साथ है प्रिया है पवित्र है पुनीत है पुरा प्रमात है न सीत है न सोच है न क्राम है न काम है न लोभ है न मोह है न का क्रोध है न काम है न देव है न दैत है।

सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अपंज है, अभर्म है, अभूत है, अछेद छेद है, सदाया गंज गंज गंज है, अभूत अभेग है, बलि अरूप राग रंग है, न द्वैग है, न भेग है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र चिन्ह वर्ण है।

रंग रूप है न रूप रेख रार है न हाउ है न पाउ है न ताऊ को प्रकार है। गजादपि नरादपि करंत सेव है सदा सितस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त याद जे बटे समस्त पस्प।

पड़त थके महाकव गर्द गाड़ अनंत, हार हार कहो सब मिल नाम नाम दुरंत, वेद भेद ना पायो लख्यो न सेवक तेव, देव दानो मूड़ मानो जसन जाना जीव, भूत भव भवान भूप दयादनाथ अनाथ, अगन पाए जले थले मह सर्व ठौर निवास, नेह गेह ना देह गेह ना नेह स्नेह अभेह नाथ अजीत, सर्व गंजन सर्व पंजन सर्व तेयन भीत, सर्व करता सर्व हरता सर्व दयाल अद्वेख, चक्र चिहन न बरन जाको जात पात न भेख, रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग, सर्व लायक सर्व कायक सर्व तेयन भंग, सर्वदाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल, दीन बंद दयाल स्वामी आदि देव अपाल, दीन बंद प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार, बरन चिहन न चक्र जाको चक्र चिहन आकार, जात पात न गोत्र गाता रूप रेख न बरन, सर्वदाता सर्व ज्ञाता सर्व को परन, दुष्ट गंजन सत्र

सुर नर मुन बंधन दुष्ट निकंदन पृष्ठ विनाशन मृत मथे कावरू कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आदि कथे किंकणी प्रसु

संकटी निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकरखण तुंद तबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अछे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण।

जब वेद कहत कई ऊंच नीच कीनो बनाव सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानत जाय मन मूड क्यों ना सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सेवंत कई पलट सूरज से जा कराए प्रभ एक रूप द्वैका लखाए अनछिज तेजन पै

करुणा निदान कारण स्वरूप जय चक्र चिन्ह नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करतपाल और धंग बृहत सुधंग स्वरूप बुद्धंग अपाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग जन छिज तेजन भिज अदाग जल थल मही बंतन दुरंत जय नेत नेत निस्दिन उचरंत जय पायो।

खंड खंड प्रचंड पहारन पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारा पार न पाए सके पदमापद वेद कदेव भेद उचार रोजी ही राज बिलोकत राज गुरु गुरुहान की रोजी न टार कीट पतंग को रंग भुजंगम भूत भविक भवान बनाए देव देव खपे अहंग मेव न पेव लखे भ्रम सिव भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान।

दान के दिवैया महामान के बटैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल के जुद के जितैया अविरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हु के मान है ज्ञान हु के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हु के काल महाकाल हु के काल है पूर्वी न पार पाव हिंगला हिमल देव गुर कर दे जी गुण गाव तेरे नाम है जोगी जोग साध पौन साध नग देख पाद अरब के अरबी आराधा तेरे नाम है परा के फिरंगी मान कंधारी कुरे सी जान पछम के पछमी पछाने निज काम है मरहटा मघेले तेरी मन सो तपस्या कर दृढ़ तिलंगी पहचाना धर्म धाम है बांग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है रोह के रोहेले मांग देश के मंगेले वीर बांग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है गोखा गुण गाव चीन मचीन के शीश ने आवती बती आए दुख देख को दलत है जिन

मानवान को महेश गंग तान को अभेष कही यत है गंग रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण यौन काहू पैना दीन साथ अधीन कही यत है पाइया न पार देज पुंज मैं अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार पल पाचे पहुंचत ताहि चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख चार केते कृष्णा अवतार केते राम कहियत है केते सस राशि केते सूरज प्रकाश केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है केते महादीन केते ब्यासे प्रवीण केते कुमेर कुलीन केते

जग मगत तेज पूरन प्रताप अंबर जमीन जह जपत जा सातो आकाश सातो पतार बितरियो अदृष्ट जह कर्म जार सातो आकाश सातो पतार बितरियो अदृष्ट

मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए ध्रग जीवा जिन हर जन सतगुर संगत

तापह जपह बिनता। तेरे अनेक पड़े बहु सिमृत सास्त जी कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई। तू जग जग एको सदा सदा तू एको जी तू नह चल करता सोई। तुद आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करह सोई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सृज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मैंडा साई। जो तौ भावे सोई थी सी जो तू दहे सोई हां पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी ध्याया जिसनू कृपा करह तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनू तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिंदु जा अवर ना कोए। तू कर कर वेखह जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरड़ भैले निवासा पानी पावक तिन है किया। पंक जो मोहो पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलया रहा। ना हाँ जति सती

कह चौपई सम सत्र सैस भणी जय अर्ध सैस फुन तीन कह जय भादव सुदी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखयाने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संबादे चार सौ पांच चरित्र समा

लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय देग तेग जग मैं दऊ चले राख आप मुहे और ना दले तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान आप ना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरिन संग।

सुर न्याय पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोरा जी जी तुमरे ध्यान को नितुड ध्यान है संत अंत लेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा तिन बेदियन की कुल बिखे प्रगटे नानक राय सब सिखन को

कर जोर करो। जब आओ कि औध निदान बने अत हीरन मैं तब जूझ मरो दोहरा। दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए अवर बासना नाहे प्रभ धर्म जुद के चाय सवैया। धन जियो तह को जग में मुख ते हर चित में जुद बेचारे देह।

मथुरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाकत नेत सुर्ग बा सुरग बर कर सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्या छै सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड वदी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परे लौ लिहो सुधारा दोहरा नेत्र तुम के चरण तर सतद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा पर संग दोहरा साध असाद जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरन कियो

गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मुंदावणी महला पंजवां। थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सुधारो। जे को खावै जे को भुंचै तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर धारो। तम संसार चरण लगतरिए सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवां। तेरा कीता जातो नाही मैनु जोग की तोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई। तरस पया मह रामत होई सतगुर